नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जोए पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उमदे। रविवार की सुबह है दोस्तों, आप सभी को रविवार की ढेरों शुभकामनाएं और मैं चाहूंगी कि आपका दिन मंगलमय हो। सभी एक ऐसा दिन है रविवार जब हम पूरे सप्ताह काम करके एक दिन हम प्रभु परमेश्वर के नाम करते हैं, लेकिन फिलहाल आज मुझे वो मौका नहीं मिला है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी गिरजाघर जाकर प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें, और जो नहीं जा सके वो मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े, और यही से हम स्टूडियो से हम आपको स्तुति गीत सुनाकर हम उनकी ओर आपको ले चले। सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है सिनत मिशन कॉयर की ओर से जीवल जल और अरु के पेड़ पर।

जीवन जल बहता चल। दोस्तों ये गाना हमें यही याद दिलाता है कि हमारे सामने कितने भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें बहते ही रहना है। जीवन जल बहुत ही सुंदर गाया है सिनत मिशन कोयर ने। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे इन्हीं का गाया अरु के पेड़ पर।

दोस्तों ये था सीना मिशन कॉल की ओर से अरु के पेपर, और बहुत ही दोस्तों खूबसूरत गाया है इन्होंने। तेरु जयजयकार हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमें भेजा है द आई ने, इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे ओमते, आपको भी गुड मॉर्निंग। यीशु राजा ती खाई था इला रो दिया, अगर ये यीशु राजा जो मेरे पास है वो टीम जैसी कल जैसी जोनाथन डेविड और अखिल कार दोस्त के गाए हैं, और मैं चाहूंगी कि हम ये गाना सुने, और मैं मुझे आशा है कि आपको जरूर पसंद आएगा। सुनते हैं यीशु राजा।

ये था दाई की फरमाइश पर यीशु राजा, और इन्होंने लिखा है शुक्रिया आरजे मोइतेजे आरजे ओम तेजोक ओ के गईते खोलछिंग आरजे ओम बोते जय जय करो जीसु की रहा हो सना दिखा ngai thai lai nei chuan chuan par paripu ke wala pa e nga telong ai thlakatan kalan nga le oron tia glauzong nga omchan kan ple ngei donne o ye he durgesh nagan pure inhone likha hai good morning arjun namaskar aapko bhi namaskar good morning aur ye pure परिवार के साथ हमें सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमें सुनते रहिएगा द आई एन सॉरी जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं पहला ओ हौल तुक आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना सिनत मिशन कौर की ओर से तेरे जय जयकार

ये था फिल्म मिशन कॉल का आखिरी गाना, तेरे जय जयकार। और इसी के साथ मैं आरजे ओमते आपसे इजाजत चाहूंगी, क्योंकि समय हमें यही कह रहा है कि जो अगला भाग है उसे बुलाया जाए। और ये मेरा अंतिम भाग नहीं है, पहला भाग है, तो 2-3 सेगमेंट तो हमारे वैसे ही चलने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम इस भाग का आखिरी गाना सुनेंगे, और इस भाग का आखिरी स्तुति गीत जो मैं आपको सुनाऊंगी वो है चंफाई वेंगथांग बियल मसीही संगति जायपोल का गाया आभिजा। और इसी के साथ मैं आरजे ओमते आपसे इजाजत चाहूंगी। ठीक इसके बाद आरजे सांगते आपके लिए लेकर आने वाली है मिजो डिवोशनल कॉरल सॉन्ग्स। जुड़े रहिएगा FM ज़ॉय के साथ।

ये था चंपा वेंथलम बी एल मसीही संगीत जयपुर द्वारा गाया आभिजा। दोस्तों मैंने आपको प्रैंक किया था, 10 मिनट और है मेरे पास। मजा कर रही हूँ, मैंने समय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, 10 मिनट और है, मैंने सोचा था 10 बजे तक है, इसीलिए मैं वापस आई हूँ और भी खूबसूरत स्तुति गीतों के साथ। इसीलिए हम दो तीन गाने तो वैसे ही सुन पाएंगे। अगला गाना जो मैं आपको सुनाऊंगी वो है नीले आसमां, रॉबिन्सन शालू के आवाज में हम सुनेंगे।

हम और आप जुड़े हैं फेमजॉय पर, आपके साथ जुड़ी है आरजे उमदे। आखिरी गाना ये असल में आखिरी होने वाला है, आबिजा चंभा वेंकलम बयाल मसीही संगति जायबोल द्वारा गाया हम सुनेंगे। और ठीक इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आरजे सांगते आपके लिए लेकर आने वाली है मिज़ाउ डिवोशनल सॉन्ग्स। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहेगा फेमजॉय के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आज ओम डे। समय हो रहा है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:40 और ये सिलसिला जारी रहेगा 11:30 तक, यानी कि 11:30 तक। और रविवार के दिन है तो जायज है कि हम स्तुति गीत ही सुनेंगे। और सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।

हम गाए होशना अगले गाने की ओर बढ़ेंगे और सुनेंगे समर्थ शुक्ला की आवाज में हाथ उठाकर गाऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत स्तुति गीत है दोस्तों, बहुत बार मैं सुन चुकी हूं और मैं चाहूंगी कि आप भी इसे सुने और प्रभु परमेश्वर को याद करें।

जो दोस्तों ये था तेरे बलिदान से मिला जीवन नया एल्बम का कलवरी का प्रेम, बहुत ही खूबसूरत गाना। आगे हम बढ़ेंगे और सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना इसी एल्बम का, हम सुनेंगे नेहमिया और ब्रिज म्यूजिक की ओर से संग तेरे।

दोस्तों ये था संग तेरे नहमिया और बिश म्यूजिक की ओर से है। हम और आप जुड़े हैं एफएम जॉय पर, आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमतेई। 11:15 हो चुके हैं, कुछ और गाने हम सुनेंगे और इस भाग हम सुनने वाले हैं सोनी लुनसांगी की आवाज में, ईसु मुझे बुला रहा है।

इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस भाग के आखिरी स्तुति गीत की ओर, और हम सुनेंगे यीशु ने कलवरी पे ईश्वर नलरिंगा की आवाज में हम सुनेंगे। और ठीक इसके बाद आज ये बेसी आपके लिए लेकर आने वाली है वेस्टर्न म्यूजिक डिवोशनल, इसीलिए जुड़े रहिएगा FM Zoe के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमते। दोपहर हो चुके हैं दोस्तों, 12:50 और ये सिलसिला जारी रहेगा 1:30 तक, और हम स्तुति गीत के बौछार लाने वाले हैं। और सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है तू है भला। और इस खूबसूरत गाने के बाद हम सुनेंगे यीशु तेरा प्रेम।

ये था डेविड सिंगर्स की ओर से झूम झूम झूम झूम नाचो रे गीत मसीह के गाओ रे। ये गाना हमें यही सिखाता है कि हमें तन मन धन से प्रभु यीशु की जय जयकार करनी चाहिए। अगला गाना आजा प्रभु डेविड सिंगर्स की ओर से।

आजा प्रभु मेरे, ये था दोस्तों डेविड सिंगर्स की ओर से। इन्हीं का एक और स्तुति गीत हम सुनेंगे जो कि है यीशु करेंगे, आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारे साथ एफएम जॉय पर जुड़े हैं, और उन सभी के लिए जो आज परमेश्वर को याद करते हुए चर्च गए हैं, गिरजाघर गए हैं, आप सभी के लिए यीशु करेंगे।

इशू करेंगे तेरी जय जयकार। अगले स्तुति गीत की ओर बढ़ते हुए हम सुनेंगे ए खुदा तू है कहा, और 20 मिनट और है, कुछ और स्तुति गीत भी हम सुनने वाले हैं, लेकिन पहले सुनते हैं ए खुदा तू है कहा।

ऐ खुदा तू है कहाँ। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे पीतर उन्मोया और पार्टी की ओर से प्रभु मेरे और अनुग्रह।

पीसी लियानिंग थके के मनमोहक आवाज में ये था खूबसूरत, और अगला गाना हम सुनेंगे अब वो बुला रहा है पीसी लियानिंग थका की आवाज में।

इसी के साथ दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस भाग के आखिरी गाने की ओर। जाते जाते हम सुनेंगे कुंखार मोई की आवाज में पवित्र आत्मा, और इसी के साथ मैं आरजे ओमते आपसे इजाजत चाहूंगी। वापस मैं आपसे जुड़ूंगी बहुत जल्द अगले हफ्ते किसी समय पर। जुड़े रहिएगा FM 100 के साथ।

0: lo zom le chok don ya nga thatu te in savain kun man duam fek ule
1: साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और जर्मी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं कक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता पर प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन का शुल्क कम कर दिया है। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बु जिले में जन्मे कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in India-Sweden relations. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. This visit is the third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. Yesterday, in the second leg of the Prime Minister's tour, India and the Netherlands elevated their ties to a strategic partnership and inked 17 agreements to boost cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. India has strongly condemned attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz, calling them unacceptable. India's permanent representative to the UN, P. Harish, said targeting civilian crew and disrupting freedom of navigation cannot be justified. He was speaking at a special meeting of the United Nations Economic and Social Council on safeguarding global energy and supply flows.
5: Targeting of commercial shipping, endangering civilian crew, impeding freedom of navigation in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. Open and predictable trade flows must be preserved and fragmentation avoided. Coordinated efforts are needed to stabilize energy markets and support countries facing external and fiscal pressures. Strengthening multilateral financial support mechanisms will also be critical in this regard. This crisis underscores the importance of combining immediate response with long-term transformation.
4: His remarks came days after an India-flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah termed AI and deep tech as the main pillars of the future economy, inaugurating the Million Minds Tech Park Phase 1 and Gremi City Campus in Ahmedabad, Gujarat. Today, he said that India has become a leader in every emerging sector of the world.
6: In the coming 25 years, the sectors that will give direction to the global economy and the global financial system, in all those sectors, India is today marking its strong presence as a founder. And this itself shows that the future of India is very bright. For the future of AI and deep tech, tech parks like these will do a very great job and will also take this forward.
4: Mr. Shah, who is on a two-day visit to Gujarat, will also inaugurate the Innovation and Incubation Center of the National Institute of Design in Gandhinagar today. The field operations for house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 have commenced in five states and union territories. These states and UTs are Rajasthan, Meghalaya, Maharashtra, Jharkhand and Municipal Corporation of Delhi area in Delhi NCT as part of the ongoing nationwide census exercise. The Railway Ministry has ordered a high-level inquiry into the fire incident involving two rear coaches of the Trivandrum New Delhi Rajdhani Express. At around 5:15 this morning, there was fire in two rear coaches, which include one guard coach and one AC 3-tier in Trivandrum New Delhi Rajdhani near Nagda of Kota Division. The World Health Organization, WHO, has declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo and Uganda a public health emergency of international concern. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced the decision after more than 300 suspected cases and 88 deaths were reported. WHO in a social media post clarified the outbreak does not meet the criteria for a pandemic emergency like COVID-19 and advised against closing international borders. Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has created history by climbing Mount Everest for a record 32nd time today. The 56-year-old climber broke his own record for the highest number of ascents of the world's tallest peak. Born in Solukhumbu district of Nepal's Koshi province, Kami Rita began his mountaineering career in 1992 and first climbed Everest in 1994. He completed his 31st ascent on May 27 last year. And that is the end of this news bulletin.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश मिश्रा।
2: छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा के घने जंगल और दुर्गम क्षेत्र के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। वहां एक दंपत्ति बीते 3 दशक से निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवा की अलख जगा रहा है। ये कहानी है डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले की। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार ने इस बार पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें चुना है। उनके इस प्रेरक सफर की कहानी आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। सबसे पहले तो रामचंद्र सर और सुनीता मैडम, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने के लिए।
3: धन्यवाद।
2: रामचंद्र सर, आप ये बताइए कि आप बस्तर कब पहुंचे और कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई कि आपको बस्तर के क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में काम करना है?
4: मैं रहने वाला सतारा महाराष्ट्र का हूँ और जब मैं BAMS डॉक्टर कोर्स के लिए जब पढ़ाई कर रहा था तो एक डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर करके एक डॉक्टर था, यूरोप में उसका जन्म हुआ लेकिन वो अफ्रीका में चला गया और वहां से आदिवासियों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। तो डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर की जो कहानी है वो मैं कई किसी समाचार पत्र में पढ़ा था। उसका जीवन ही उसके आत्मकथन है, वो मुझे अंग्रेजी में एक छोटा सा किताब मिला, वो मैंने पढ़ने के बाद वो मेरी थोड़ी सी प्रेरणा हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रकाश आमटे जो गढ़चिरौली में काम करते हैं वहां कुछ साल के लिए काम में जाने का मैंने विचार किया, वहां मिला मैं उनको लेकिन दुर्भाग्यवश वहां लेप्रसी का कोई मैं कोर्स नहीं किया था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में ये एक वनवासी कल्याण आश्रम करके एक संस्था है, उन लोगों को मालूम हुआ कि ये आदमी कहीं तो आदिवासी क्षेत्र में जाके कुछ काम करने का सोच रहा है तो वो मेरे से संपर्क उन्होंने किया और उन्होंने मुझे ये किया कि आप नासिक और डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है उस बॉर्डर में आप काम कर सकते हो। तो वहां मैंने 4 साल भिल्ल आदिवासियों के बीच में काम किया और वो उनका जो जीवन है, उनकी जीवन की कठिनाई, स्वास्थ्य की उनकी असुविधा इतनी सारी, ये सब देखने के बाद मेरे अंदर से प्रेरणा जागृत हो गई कि ये हम काम कर सकते हैं और वही से मेरा धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मुझे मन की तैयारी हो गई कि मैं लंबे समय के लिए आदिवासी क्षेत्र में काम करूंगा। फिर हमारे संस्थाओं ने हमको बताया कि भाई महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा समस्या है, वहां जाके काम करना चाहिए। तो फिर मेरे मन में यह हो गया कि मैं महाराष्ट्र के बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाके अधिकारियों को बताया, 89 की बात है ये। हाँ, तो फिर 90 में हमारा शादी हो गई और 10 दिन के अंदर हम दोनों बस्तर में बारसूर में आ गए हम लोग।
2: सुनीता जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि शादी के बाद लोग कुछ समय खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और ये बड़ी रोचक बात है कि डॉक्टर रामचंद्र जो है उनका कमिटमेंट अलग था, उससे पहले से आपने एक कमिटमेंट कर रखा था अपने जीवन को लेकर के। आपके जीवन में ये चुनाव कैसे तय हुआ?
3: हाँ, इसका 2 प्रमुखता से मुझे लगता है कारण है ये विचार मेरे मन में आने का, क्योंकि मेरे घर में जो वातावरण है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए मेरा मामा था जो ज्यादा रूप से काम करता था और बाकी भी घर के सदस्य कोई कुछ ना कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत काम करते थे, तो उसके कारण और पुणे का एक जो सांस्कृतिक और सामाजिक सब वातावरण है उसका भी असर हमारे सभी के ऊपर पड़ता है, जो संवेदनशील है उनके ऊपर तो होता ही है। तो बहुत सारे जो सामाजिक सुधारों का इतिहास है पुणे शहर को, उसके यहाँ जो काम करने वाले समाज सुधारक थे उनके कारण, वो भी हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ ही रहे थे जब पढ़ाई चल रही थी शालेय जीवन में। फिर महाविद्यालय जीवन में मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन से संपर्क आया, उसके कारण मुझे अपने भारत में जो भी इस प्रकार से समाज है अलग अलग और उनकी अवस्था क्या है, हम किस प्रकार से जीना जी रहे हैं और उनको कितने छोटी छोटी बातों का भी सामना करना पड़ रहा है रोज के जीवन में, ये सब हमको हमारे जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता प्राध्यापक कार्यकर्ता भी हमारे साथ काम करते हैं विद्यार्थी संगठन में, तो वो सब बताते थे और वो हमेशा यह आह्वान करते थे हमें एक छात्र के रूप में ये सभी समस्याओं को जानना चाहिए। और हमारे साथ साथ कुछ छात्र भी ऐसे थे कि जो मास्टर डिग्री कर रहे थे लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, तो उनका भी वो सब देख के मेरे मन में विचार आया। बहुत लोगों को फिर पता चला कि भाई इसके मन में ऐसा कुछ काम करने का है। तो वैसे ही हमारे जो मैं जहाँ रहती हूँ, मेरा मायका का घर है, वहां ही एक वनवासी कल्याण आश्रम की फाउंडर मेंबर रहती थी नंदाताई करके, तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे तुम्हें तो गांव में जाके कुछ काम करना है तो तुम्हें फिर आओ हमारे साथ, अपना जो संगठन का काम है वो ऐसे ही वनवासी क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में काम है। फिर वो संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ जगह भेजा, नासिक जिले में भेजा, रायगढ़ जिले में भेजा, ठाणे जिले में भेजा, जहां जहां मतलब काम चलता है अभी भी वहां पर भेजा। और वहां के कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत किया, कुछ गांवों में घूमी, तब जाके मुझे ये मेरा विचार पक्का हो गया कि नहीं मैं ऐसा काम कर सकती हूँ।
2: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहां से गतिविधियां शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
4: अबुजबान में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय, फिर भी हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, तो वो 8-10 लड़कियां पहले से रहती थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबुजबान में गए थे। और इतना दूर से पेशेंट आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ अपने प्रिंसिपल

0: को पक्के करने हैं, बिना नाम लिखने के पहले ही पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू कर देना, पैसा नहीं पूछना, और उसको जहां ठीक हो जाए वहां तक ले जाके उसको ठीक करवा के लाना। हम अबुझमार में इतना दूर मेडिसिन के लिए नहीं जा सकते थे, ले जाके पेशेंट हमारे यहाँ आते थे, तो उनका आना ही इतना कठिन था। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर इतनी प्रेरणा जागृत हो गई, आपको आश्चर्य लगेगा कि 20 किलोमीटर गीदम है, तो चार चार महीना में गीदम नहीं आता था, मैं बारसूर में बैठा रहता था, क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया की केस है, निमोनिया की केस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत डेंजरस केस है, ऐसी केसेस जब आएगी उस समय आपको उसके साथ रहना ही है। अगर मैं यहाँ ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो महारानी अस्पताल जगदलपुर में ट्रांसफर करना है, तो एम्बुलेंस ड्राइवर डीजल हम पक्का तैयार करके रखते थे। इतना ही नहीं, इतवार को जो पेशेंट रुकते थे वो पेशेंट के लिए सवेरे जो भी ट्रीटमेंट करना है सब करना है, तो एक ऐसा लगता है कि इतवार को मैं थोड़ा जंगल घूमने के लिए जाऊंगा, इंद्रावती घूमने के लिए जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो भी मैं आश्रम में बोल के जाता था कि मैं इस इलाके में हूँ, अगर जंगल का पेशेंट आए तो तुरंत मुझे बुलाना है। कठिनाई भाषा के प्रश्न था, लेकिन हमारे साथ माड़िया महिलाएं थी इसलिए वो भाषा का प्रश्न हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आया।
1: मैडम आप बताइए कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबुझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहां आपने क्या देखा और वहां के समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं?
2: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, इसलिए किसी को भी आना और वो जैसे डिलीवरी के लिए आना है या कोई बच्चा बीमार है या बार बार, अभी तो हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई अस्पताल में डिलीवरी हो सभी महिलाओं, लेकिन उस समय ये सब संभव ही नहीं था क्योंकि उन तक वो बात पहुंचती ही नहीं थी, उनको वो समझ में भी नहीं आती थी। अच्छा, वो डिलीवरी की अगर कोई महिला है मतलब प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है तो उसको 6-6, 7-7 घंटा चला के लाना, मतलब वो खुद पैदल चल के नहीं आएगी, यानी उसको कक्कर खटिया पर डाल के वैसा सब लाना है, तो उसके लिए बाकी लोगों का जुगाड़ करना पड़ता है। फिर अगर वो बाकी लोगों का जुगाड़ करना है तो उनको भी कुछ देना पड़ता है, कभी कभी कम से कम दाल चावल दे दो, तब जाके लोग तैयार होते हैं। तो ये सभी दिक्कतें हमको धीरे धीरे समझ में आई, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे सब जा जाके बता के, हमारी दो दो जो बहनें थी उनको हमने प्रशिक्षित करके ऐसे हम 8 सब सेंटर चलाए, और उसके आजू बाजू के 15-16 गांवों में ये बहनें जाती थी, वहां पर ये सभी बातें बताती थी। उसके कारण ये बात हुआ कि जल्द से जल्द पेशेंट को लाना है, बारसूर ले जाना है और ठीक ठाक करना है।
1: डॉक्टर रामचंद, आपको कैसा अनुभव रहा अबुझमाड़ क्षेत्र में जब आप गए, तो सबसे बड़ा चैलेंज जागरूकता ही था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करना ही था स्वास्थ्य के लिए?
0: जागरूक करना ये सबसे बड़ी बात है, वो कि हमको जो बीमारी आई है वो बीमारी ठीक हो सकती है, ये इनके दिमाग में नहीं है, तो बीमारी है तो शरीर है तो बीमारी रहती ही जाएगी, ये कौन सा बड़ी बात है, अरे लेकिन ये बीमारी तो ठीक हो सकती है। तो एक पेशेंट को लाए थे तो बोला कि 6 महीना हो गया, 6 महीने से बीमार है, तो बीमारी अबुझमाड़ से था और बारिश के दिनों में वो ला रहे थे, तो गुडरा करके एक नदी है, वो नदी पार करके फिर इंद्रावती नदी पार करके उस पेशेंट को लाया। तो मैं बोला भैया मैं इसमें ही तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि ये दोनों नदियों में तो आदमी बह जाता है, इसमें बच करके यहाँ आया है, और उसको डायबिटीज विद ट्यूबरकुलोसिस विद जॉन्डिस, अच्छा 3 बीमारी थी उसको, उस पेशेंट को। तो मैंने देखा तो मैं बोला अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा है, सीरियस केस है ये, इसको कैसा रखेंगे। तो वो फिर पेशेंट को हम लोगों ने जगदलपुर ट्रांसफर किया, पेशेंट ठीक होके आ गया। अबुझमाड़ में इसका हम लोगों ने अभी भी दर्शन कर रहे हैं, अभी भी कुपोषण का कार्यक्रम लोग ले रहे हैं ना, तो बच्चों को 10 दिन का चिक्की देने के बाद तो 3 दिन के बाद जाते हैं तो पूरी चिक्की खत्म हो गई, कौन खाया। तो बोला हमारा एक साला है दूर से आया अबुझमाड़ से, वो आया है वो देखा और वो 4-5 के वही खा लिया। अरे ऐसा मत करो, बच्चों को बीमारी से मुक्त करने के लिए सब अभियान चल रहा है और वो चिक्की अब दूसरे लोग खा रहे हैं। अबुझमाड़ में आपको काम करना है तो इस समस्या से आपको जूझना पड़ेगा कि कोई भी चीज गंभीरता से नहीं लेते, उनको गंभीरता लानी पड़ेगी, चेतना जागृति, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम। तो अबुझमाड़ में अपनी मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
1: जी जी, आपने देखा महिलाएं काफी ज्यादा एनेमिक होती हैं, खासतौर पर आदिवासी समाज में सिकल सेल की भी समस्या है, इसको आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया?
2: वही बात मैं फिर से बताऊंगी कि जो अभी भी पहुंच विहीन गांव है, आपको रोड साइड के गांव में जहां तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की सब सुविधाएं अभी पहुंच रही है, वहां की महिलाएं जागरूक हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, मितानिन जो बता रही है उसको समझ रही है, आगे अपने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका भी वो सुनती है, कुछ कुछ टीकाकरण है वो सब करती है, लेकिन अंदर में अभी भी दुनिया का ही प्रभाव है। और वो अगर आते भी है तो भी बूढ़े लोग वहां पर है, अभी जैसे हमारा नारायणपुर रोड पर जो बोतली घोटिया हराकोडेर वगैरह गांव है वहां पर ये चलता है उनके जो, क्योंकि वो तो बस्तर जिला पड़ता है वहां से, लेकिन फिर भी वहां से नर्स और ये लोग आते हैं वेलनेस सेंटर करके, आजकल जो कल्पना सरकार ने ये की है, तो उनके पास गोली वगैरह मांगने, लेकिन वही पुराने ही, मतलब जो बुजुर्ग, पुराने नहीं बुजुर्ग जो है वही बार बार आते हैं। मेरे बच्चे को वहां पर समय पर ले जाना चाहिए और ये करना चाहिए, ये बहुत ही कम होता है। बस कुछ गांवों में हमारे कारण जो है वो ये हुआ है, चलो भाई कम से कम मलेरिया जो जांच है वो तो करो। आपको लगता है ना कि बच्चे का मलेरिया, उसको कैसा हो रहा है, उनको समझाया हमने और वो वेलनेस सेंटर में आके कम से कम वहां पर ये करते हैं, नहीं तो पहले तो वो उसके लिए भी दुनिया के पास ही जाते थे।
1: डॉक्टर रामचंद, आप लोग इसके अलावा कुपोषण एनीमिया के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं इस क्षेत्र में?
0: हाँ, हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम, मास नाम से अलग स्कीम बनाई है। उसमें हम लोग जो जंगल का क्षेत्र एकदम अबुझमार में 5-6 गांव में हमने चालू किया और बाकी क्षेत्र में भी है, जैसे इंद्रावती किनारे का सब इलाका है, तो वहां हम लोग एक गांव के 20 बच्चों को चुनते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंटेज के नीचे है, उन बच्चों को हम चुनते हैं, उनकी पूरी जांच बाल रोग तज्ञ से उसकी पूरी जांच करवा लेते हैं, उसके बाद उसके अदर जो डिसीजेस है वो सब कंट्रोल करने के बाद फिर कृमि का गोली, फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट, मलेरिया प्रतिबंधन जो है वो, उसके बाद फलीदाना गुड़ और काला तिल इसका चिक्की और एक चिवड़ा बनाते हैं देते हैं, उसके बाद हम लोग दाल तेल और बाकी मिरी और हल्दी ये सब कुछ, तो ये सारा उनको हम देते हैं। तो मध्यान्ह भोजन उनको करना है, उनका घर का चावल और हमारा दाल और तेल दिया वाला उसका उनको रोज खिलाना है बच्चों को, तो ये कार्यक्रम चलता है। सब्जी बीज भी देते हैं कि सब्जी उगा के वो अपने रोज का जो भोजन है उसमें सब्जी पन्ना डाले, हरे पन्ने का सब्जी डाले, मच्छरदानी लगाते हैं कि नहीं ये भी देखते हैं, क्योंकि मलेरिया के कारण भी खून टूट रहा है। तो उस गांव में भी एक मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और हम इतना तक बोलते हैं कि रात को 10 बजे जाके देखो कि वो बच्चा मच्छरदानी में सोया है कि नहीं सोया है। हम लोगों ने अभी तक 24-25 गांवों में ये कार्यक्रम चलाया, 400 के ऊपर बच्चों को हम लोगों ने इसमें ठीक करवाया है। एक समय हम लोग 1-2 गांव लेते हैं, इस बार हम लोगों ने 4 गांव लिए हैं, माने 80 बच्चों के लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग प्रोग्राम अभी लगातार चल रहा है, 2021 से हम लोग कुपोषण के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और इसका मैंने विचार बदलो तो नसीब बदलेगा ऐसा बोलते हैं, तो स्कूल में जाके इसी सारे अनुभव हम स्कूल में जाके बच्चों को सुनाते हैं।
1: तो ये थे सुनीता गोड़बोले जी और डॉक्टर रामचंद्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव के आदिम समुदाय की सेवा में बिताया है और उनकी इस प्रेरक बातचीत के जरिए आपने जाना कि हमारी शिक्षा का, हमारी जो जीवन शैली है उसके क्या दायित्व हैं परिवार और समाज के लिए।
3: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद गोड़बोले और श्रीमती सुनीता गोड़बोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश मिश्रा।
4: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

na kan lom na hi kan sak na lo ni fo chi na ni sumi sharing chung chuan he la moi tak ril tak mai hi kan ngai thado nia om तो चलिए दोस्तों हम सुनते हैं हाथ उठाकर गाऊंगा और यह समर्थ शुक्ला की आवाज में।

RJ Zolway, namaste, duty nuam leranti. Kan duty nuam hal. Top, dikhan ming mui te. Oh, min lo ngai thazel. Do na bang poin lom thukan soi lo ka nga. Chani midang, oh, miril in thup tak. Tak te po kha, an na insum de uri ni kari nga. Tu na hiyan mo. Nakina chanin, An in kol kom hun a chan aron puak ke le pop. Pop me don ni. Oh, le, ti chanin. नेक्स्ट गंगाई थांगा नेक्स्ट जो हम सुनने जा रहे हैं दोस्तों ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा स्तुति गीत है और शायद आपने इसे मिजो वर्जन में भी आपने कई बार सुना होगा जिसे गाया था एस्थेर नम्ते की ओर से बहुत ही प्यारी और सुरीली आवाज में उन्होंने गाया था और यस ये गाना बहुत ही खूबसूरत है आशा मेरी ओ हेलाही एस्थेर नम्ते पोखाने नसा आ अमोय एम एम मेया tin ala thu hi tha a asha kan ti chan be se mo be se na kan ti te khani a nang chau hi ka be se na om chun kan ei chun ini tero har sat na boy na a kara po be se tur kan nei pathian kan nei hi kan wan nei tak se ta chumi sharing chung chuan he la hi kan ngai thadon ya o to chale dosto isi ke sath hum sunte hain asha meri

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था यीशु मसीह तू है आशा मेरी ईश्वर ख्रिस्ता कभी से न कन्वे से उम सुनि नि अति ना नि त्र लाही मो ए मे मिया पथियान फकने ला कन सुन जोम से लंगा नेक्स्ट हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो कि मेरा भी बहुत ही फेवरेट है और इसे गाया गया है विजय कुंदपुरम और शेल्डन बंजेरा अलेन गंता एंड प्राकृति अंजलिना की ओर से. एंड इस गीत में हम सुनते हैं कि चाहे हमारे सामने चट्टान हो, पत्थर हो, ठोकर हो, दुनिया की कुछ भी हो, लेकिन मैं कभी नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरा जेहोवा जायरा है. ओ हेलाही अरोपु ए मे मे कलदु तक जो जिंगमी ने असाम सोम क्वाले पखत बे छन खान ने आ थिन लिम को राम जो माइला ए ए ए एंग मा गलाउ लवांग नंग कने ने यम सियाति छौवेल खान या अमोय अनरन अन फुआ मोय हि कतिल तुका स्वानिन हेलाही विजय कोंदापुरम ते शेल्डन बंजेरा एलिन गंदा एम प्राकृति अंजलिना तेना अंसक अनिया अमोय सेवे कतल सु ओ अशन पाते पो इन लो ngai थथिनुला लो a video te pohi lo in sin ula atong je thiam lo tan po khani an mel an pathian faka an sai mel hi apmu nom shim shim ani mo to chali hum sunte hain ishwar ki stuti geet hum jari rakhenge next time sunte hain na darunga is waqt mujhe jitne bhi log sun rahe hain aap sab ke liye milunga ithatu song song titan khan special tukin hela hi katlan sakte ho.

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था ना डरूंगा। बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत था। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। और इस खंड के लिए सबसे आखिरी स्तुति गीत सुनने का फिर से वक्त आ गया है। और इस खंड के सबसे आखिरी गीत के लिए हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, ये है तू ही। एंड यस, इस गीत को भी गाया गया है उन्हीं विजय कंदपुरम, अलिन घंटा, प्राकृति एंजेलिना एंड थंगवासवम के आवाज में। एंड यस, इस गीत के साथ हम ईश्वर की स्तुति जारी रखते हैं। एंड मैं फिर से वापस लौटूंगी 6:40 में। तुन सेगमेंट ताना कन आ पथेन फकना ला कन गै था नुंग बेर तोर लो थेंग ता आ दा रुकले मि सोमली या करन की ले दो नने मि लो गाइ थ तोते मि लो गाइ थले छु तोते इन एस एम एस रन थंडे चुर चुर तोर खानि गन इन सोमा। और इसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे आरजे रिनपुई के साथ वेस्टर्न म्यूजिक डिवोशनल सेगमेंट में। इसी तरह आप उनके साथ लगे रहिएगा। ओ हे मिजो ह्यानिन साफला पथ्यान फकना ला आरजे रिन पुइनेन हुन कन कन मन सुन सोमले दो ननि ति चोन दा रुक लेमिन सोमली या करन किर लेंग ओ आ हे ला हि इन नि नोंगा थतु सोंग सोंग ते एसएमएस मेरन थोन तु सोंग सोंग ते तान खानिन करन आ डेडिकेट सक विक चोनी ओ। तो चले सुनते हैं एक बहुत ही ये प्यारा सॉन्ग तू ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM 100.7, आपके साथ है आरजे इस बाल बोई।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जोई 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजी ज़ोलबी। आज का हमारा ये दूसरा खंड यही शुरू होता है। इस खंड में हम सुनेंगे द विश्वासी ऑल जनप्रियन पार्टी की ओर से ईश्वर की स्तुति गीत। खंड की शुरुआत के लिए सबसे पहले सुनते हैं ललचंदपुर एन पार्टी की ओर से मिलकर चले।

तो दोस्तों, आपने जो सुना वह था द ललचंद पुयन पार्टी की ओर से मिलके चले। ओके, मैसेज आया है वी कुंगते ह्यानेन आरजे जॉल बॉय वही नमते हुए मंग नो अमोर अंते ए वी कुंगते का मंग नो अम खूब मे पथियान जारा संडे ही सुतरोगन हनिंग खोम eng eng dang ti ma ya han khom thor phot jel me la hun hi kan mang nuam chu ni mai tro min pom pui zong te ni em ge shelawa nang hun ni mang nuam em enge win te hun ni man dan te kha vi kung te ge shachak o the chelie next time sunte hai the vishwasi ki or se mere guna ki

तो दोस्तों, इस खंड के लिए सबसे आखिरी गीत सुनने का वक्त आ गया है। कंसक मेंटी अंड्रे लो खोपा तेरो खम ओम लो छीन कतिया ओवी कुंग ते ह्यान आर जी जवाल बुई ही आमी ही बोल जे उछीना करी लो लु तुकी कबे दोंग नंग माने ह्यान हन्नी वे लंग चुआन कलूंग अलेंग अंगा थुरिल तक तक लो पाई पॉइंट मई थे मासे भी निपुई दिस दो सी लो कन रिल ले लो मई नी खा हे अरोन अ मैसेज चंग शिवशि अरोन सैदान चंग अ रिल जगा रोन लंग हाल दे मो कन रिल कन रिल ले कन रिल ले लो मई नी ही आन तिवेल ते ही अ रिल जिया खा ति चियांग तु तु मई विकुक दे ही सुमो कंगाई सांग निया ए कबोल लो ति ही आ के मान ग चियान तुक से थ्यान हम आपो हियान चियांग इन करिंग अरोन तिवेल क्वाल वेल मो खा खानी चान गुड बॉय हियान इन आरजी ज्वाल बोई गलो उम रेंगे ओ एसी पनी नॉय अपो लुम लम शे तरों दे निये वही नी अलुम अलुम अनी तरो अलुम ती में लो जो सोई थिया महर ओ तिचुआन इन दार क्वाले मिनी निया करों नेट ले अंगा हे मिजो हियान इन बट मिजो डिवोशनल सॉन्ग आरजी श्वाय हो इन हुनकन मंगदो ननी। तो चलिए, इस खंड की सबसे आखिरी गीत हम सुनते हैं ललटन पुयन पार्टी की ओर से, माफ कीजिएगा, द विश्वासी की ओर से, प्रभु मेरे परमेश्वर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM 100.7, आपके साथ है आरजे इस वाल पोई।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे स्वालबुई। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा सबसे आखिरी खंड होने जा रहा है। इस खंड में हम सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। रिपब्लिक वेंग मसी संगति जायपोल, दोर पुई वेंग थर्बियल मसी संगति जायपोल, और इनके द्वारा हम सुनेंगे ईश्वर के स्तुति गीत। और उम्मीद करती हूँ आप अपने प्यार भरे एसएमएस हमें भेजते रहेंगे। मेरे साथ लगे रहिएगा। इस खंड की शुरुआत करते हैं दोर पुई वेंग थर मसी संगति की ओर से। हम सुनेंगे यीशु मसीह।

दोस्तों, आपने जो सुना वो था दुर्पी वेंगथर मसी संगति की ओर से यीशु मसीह। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। अगले गीत हम सुनेंगे रिपब्लिक वेंग मसी संगति की ओर से नीले आसमान।

सुना वो था रिपब्लिक विंग मसीह संगति की ओर से नीले आसमान ओले विकुंते ह्यानिन आरजे जोलबो इमेल का मुचाक ले तो ए इलाई मेल मुल मुल खारन थे कलाई ngai लो सिन विकुंते वान मक छिन तक ओ कलाई मोही इट इज या नि एत्रो आ कनिन मुले वत्तुरा ngai यंग त्रो आ जाइना हे kei ma tak chu karon langdon lawa ma se dar college san betagin rj shraya ron langdon ani o rj shraya lai mel khain muthei don ani chin van nei lutuk mo ron life don ani chuan chuan facebook lama te pokhan in lo clear chu kha kan be se ya okay ti chuan in nadang kan ngai thale anga next time sunenge ek bahut hi pyara song jo ki हिंदी में स्तुति एक बहुत ही प्यारा स्तुति गीत है और इसे गाया गया है चंद्र और नेल्सन की आवाज में जयपोल दे उंगर उंगर कन गाय था तेरु जयपोल लो दे पो खा गई था कचाक ओम तो इन करिंगा मिलो गाय था तू ते तान पो इन चुवान चुवान अकार लगा जयपोल ते पो कन जेप ले जे उजे उठे नंगा तो नाइ रोड सुवानी मलजाई दे उलेक लमोय तक मे पथियान फकना ला कन गाय था दो नने और हेमी अल सतु ते ही चंद्र एंड नेल्सन ते नी आ और गीत के बोल है यीशु

तो दोस्तों, आपने जो सुना बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। एंड ये दोनों ही जो है त्रिपुरा से हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं। एंड उनकी बहुत ही मधुर आवाज हमने सुना, ईश्वर की स्तुति गीत हमने सुना। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। ओले मेंग मोइते हिया नी नार्जे जोल बो इतान दे कबुल कबुल मी तान रंतिया मेंग मोइते आ इतान पन करन लान बेंग हाल ओ कलोम लुत तुके मिलो गाय थे जेलुला तिचुआनिन हुन कन गा तो लवा। नेक्स्ट हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, ये है टूटा हुआ मन। एंड ये बहुत ही प्यारा गीत है, ईश्वर की स्तुति गीत है, जो कि हिंदी हिंदी क्रिश्चियन वर्शिप की ओर से है। एंड इस गीत में जो ये जो गीत है, ये कहना चाहता है कि इन्हें हेल थो हियानी तुन गन गई थाक तो हियानी थिन लुंग के सोम तो ते ओ बे से ना नहीं तो लौते मो खांग ते थे ना खान पथियान कन पथिया ने नाई रेंग नि ते लमनी आ चुवान स्वानीन कन पथियान सु कन ने ना उम रेंग कन बुला नाई रेंग ते लमनी आ चुवान स्वानीन हेला ही अमोय एम एम ए बोका मिनोंगाई थतु ते तुना मिनोंगाई थतु सोंग सोंग ते तान खानीन करण थान सकचेव नी ओ करण थान सकचेव तेरा दिख जो को में। तो चलिए हम सुनते हैं टूटा हुआ मन।

तो दोस्तों, आपने जो सुना बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, एंड आपके सादगी के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, एंड ये प्यारा सा सॉन्ग हम और सुनेंगे, शुक्रिया मेरे प्रभु. चलिए सुनते हैं इस मधुर और सुरीली आवाज में.

तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लूंगी। आपके सादगी के लिए, प्यार भरे एसएमएस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हम बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम 100.7। आपके साथ है आरजे इज़वाल बोई वो इंताना कन हिंदी सेगमेंट कन्नो नुनु बेरा लो निता आ हमेला ह्यान कथा चेउंगा हुन गाया तरो दम तकिन कनिन तोले छेउ कन बेसे दोन्या ओ एसएमएस छतक तक ते मिनो थोंतु ते मिनो गाय थतु जोंग जोंग ते चुंगा लोम थु सोइ बकनी स्वानीन हे लाही कन गाय था गा हे मिला यानी कन मंग ट्रैफिक दोन सेवनी अ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम 100.7 और आपके साथ है आरजे इज़वाल बोई। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, मंग ट्रैफिक बोले।